0: ये खबरें एनएच के वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से नशर की जा रही हैं। अब मजीद खबरें समाप्त फरमाइए। जापान की बड़ी गाड़ी साज कंपनी टोयोटा मोटर के साबिक सदर ओकुदा हिरोशी हफ्ते के रोज इंतकाल कर गए। उनकी उम्र 93 बरस थी। ओकुदा ने 1955 में तब की टोयोटा की सेल्स कंपनी में शमूलियत इख्तियार की। बाद में ये कंपनी टोयोटा के पैदावारी शोबे में जम होकर टोयोटा मोटर बन गई। अनजहानी ओकुदा 1995 में बानी खानदान से बाहर कंपनी का सदर बनने वाले पहले फर्द थे। उनके दौर में टोयोटा ने प्रियूस हाइब्रिड गाड़ी लॉन्च की और अपने माहौलियाती इकदाम को बढ़ाया। कंपनी ने बैरून मुल्क मंडियों में अपनी तोसी को भी तेज किया। 1999 में टोयोटा का चेयरमैन बनने के बाद ओकुदा ने अपनी तवज्जो जापान की कारोबारी बरादरी पर मरकूज कर दी। उन्होंने उस वक्त के वजीर आजम कोइजुमी जुनिचिरो के दौर में हुकूमत के इक्तसादी और मालियाती पॉलिसी पैनल के रुकन के तौर पर खिदमात अंजाम दी। वो 2002 में कारोबारी फेडरेशन के पहले सरबराह भी बने, जो अब जापान बिजनेस फेडरेशन या कैदानरेन कहलाती है। वजीर आजम के खसूसी एलची के तौर पर ओकुदा ने खलीजी रियासतों और दीगर मकामात के दौरे किए, गैर मुल्की रहनुमाओं से मुलाकातें की और जापान की जानिब से सफारतकारी में हिस्सा लिया। उन्होंने जापान बैंक बराए बैन अल्कौमी ताउन के सरबराह के तौर पर भी काम किया, जो पॉलिसी पर मबनी मालियाती इदारा है। ओकुदा 2018 तक टोयोटा के मशीर रहे। अमरीकी फौज का कहना है कि उसने पानामा के झंडे वाले उस कार्गो जहाज को नाकारा बना दिया है जो ईरान की तरफ जा रहा था। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने मंगल के रोज सोशल मीडिया पर कहा कि उसकी फोर्सेस ने मस्कूरा बहरी जहाज के स्टीयरिंग गियर को नाकारा कर दिया है। उस जहाज ने ईरानी बंदरगाह की तरफ जाते हुए ईरान के खिलाफ अमरीकी नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी की कोशिश की थी। पोस्ट में कहा गया है कि जहाज के अमले ने इंतबाह को बार बार नजरअंदाज किया, जिसके बाद अमरीकी बहरिया के एक हेलीकॉप्टर ने जहाज के इंजन रूम में मिसाइल दागे। पोस्ट में मजीद कहा गया है कि ये जहाज अब अमरीकी नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी करते हुए ईरान की जानिब गामजन नहीं। ये नाकाबंदी मुकम्मल तौर पर नाफिजुल अमल है। अमरीकी फौज का कहना है कि उसने 14 जुलाई को मौजूदा बहरी नाकाबंदी शुरू होने के बाद से 11 अगस्त तक 3 ऐसे बहरी जहाजों को गैर फाल किया है जिन्होंने हदायात की तामील नहीं की। शाम की एक अदालत ने साबिक सदर बशारुल असद को कत्ल और इंसानियत के खिलाफ जराइम समेत दीगर जराइम में सजाए मौत सुनाई है। शाम की सरकारी खबर रसाई एजेंसी ने इतला दी है कि दार हुकूमत दमिश्क की एक अदालत ने मंगल को इस सजा का ऐलान किया। एजेंसी ने कहा कि असद के छोटे भाई और उनकी हुकूमत के साबिक सीनियर अहदेदारों समेत 8 दीगर अफराद को भी मौत की सजा सुनाई गई है। असद की जेर क्यादत शाम की आमराना हुकूमत दिसंबर 2024 में गिर गई थी। ये मुल्क 2011 से खाना जंगी का शिकार था। शाम की तामीर नौ के साथ साबिक हुकूमत के मुहासबे के इकदाम सामने आ रहे हैं। असद हुकूमत ने हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरीन के खिलाफ क्रैक डाउन किया था। मंगल को सुनाई गई सजा में अदालत ने असद के बतौर आला तरीन फैसला साज और कत्ल और दीगर जराइम में मुलव्वस रियासी इदारों को अहकाम देने में उनके किरदार का हवाला दिया। असद अपनी हुकूमत के खात्मे के फौरन बाद रूस में जलावतनी इख्तियार कर गए थे। इस मुकदमे की समाअत उनकी गैर मौजूदगी में हुई। ये अभी तक वाज़े नहीं है कि आया उनकी हवालगी की जाएगी या नहीं।
1: और अब आखिर में आज की अहम खबरों पर एक नज़र। जापान के वजीर दिफा कोइजुमी शिनजिरो का कहना है कि शुमाली कोरिया ने बुध की सुबह कम अज कम एक बैलिस्टिक मिसाइल दागा है। और टोक्यो और नवाही इलाकों में नुकसानात करने के बाद एक ताकतवर तूफान जापान के मरकजी जजीरे से गुजर गया है। हुकाम का कहना है कि खतरात अभी खत्म नहीं हुए हैं। और कोलंबिया में पीर के रोज आने वाले एक ताकतवर जलजले से मरने वालों की तादाद 180 से तजावुज कर गई है। इसके साथ ही एनएचके वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से खबरें खत्म हुई। मजीद खबरों, तबसरों, तज्जियों और दिलचस्प वीडियोज के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट nhk.jp/urdu।